तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ता का दरबारा।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौस, चंद्र कौस, सूर्य कौस, जोग कौस, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई, जब दिशा संगत में पाई ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब तीनों सो भल मान्यो इस मत साधु से पाई, सब में रव रहे प्रभु कह देख देख नानक की साई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने ये तराना जेड़ा है ये अनकौमा जड़िया ने गैर सिखा चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नु तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ, ये तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी ये सानू लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान तो तराना श्रवण करना, साहब सब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तरह ने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ मंदिर विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना तो तद्र दानी दानी सोमानी तल सोम तिरना, तद्र दानी दानी सोमानी तल सोम तिरना, तल सोम तिरना तल सोम तिरना तल सोम तिरना। जिस वेले आवे ना तुम दानी उदो महाराज नु मत्था टेकना जे, तुम दानी हम भिखारी है और तुम दानी है। तद्र दानी दानी तुम दानी तरल तुम दिरना, तरल तुम दिरना, तरल तुम दिरना, तद्र दानी दानी।

चार पंक्तियां हैं। धागिरदी धर्म दृष्टांत धागिरदी देम दिरना धागिरदी धर्म दृष्टांत धागिरदी देम दिरना धागिरदी प्रिक्ते बंता धागिरदी तोम तोम तोम दिरना।

नक्षत्र वीणा का एक स्वर है दीन, बिरना जो है एक सितार का स्वर है, तिरना तिरना सितार वजद और दीन जड़ा है वचित्र वीणा वजद, यह साजा के दर्शन कराए ने।

पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात दो दाई दया खेले करनी आपो अपनी सारे जपो जिन्नी नाम जय मसक नानक

मेरा कट कट के अंतर की जान तुपरा मेरा अंतर जामी जान कट कट के अंतर की जान तुपाले

बोलो भी ना, कुछ कहो भी ना, कि परमात्मा सुन लेंदा है, परमात्मा जान लेंदा है, अनबोध ही जानो हाल, सब कुछ जानता है, वो वेख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज कैसी मंग आई। परमात्मा ते ख्याल ही रखता है कि सेवक मंग करे ते मैं पूरी करा, कदों जीव मंगे ते मैं उसनु देवां, कि असी आउने ही मंगण वास्ते इस डर ते डिगने ही तां कि सतगुरु अज आ वस्तु चाहीदी दे दे, ते सतगुरु एक खिन भी नहीं लांदा सेवक चोली विच दात पा देंदा। किन्हां दी जिन्हां नू यकीन है, भरोसा है, अकीदा है, असी

सोई कसम हमारा तब मेरा अंतर जामी जान। मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा, सब कुछ करन कराने वाला उपापी। अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा, ते जिदा एहो जिहा खसम होवे, जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे, ते ओदी कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जाती नहीं, क्योंकि उसका मालिक सब कुछ जानता है, सब कुछ आप करन करावन हार है, ते उन्हें ते कमी हो ही नहीं सकती। किनू अंत

मानुक अब मान ले प्रभु मेरा अंत जामी जान। ओ प्रभु सब कुछ जान साहब आखदे ने जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। जे तेरे मन अंदर कोई भावनी है ना ते आके गुरु अग्गी अरदास कर, ओ गुरु भावनी पूरी कर देवे, खाली चोली नहीं भेजेगा भर देवेगा। क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है, इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए, जो खाली चोली आए ने पर के गए ने, जो रोंदे आए ने हसते गए ने, ये तो दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक हो जरा। जे गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार अंदर शीश की मंग हुई तो शीश पेटा दे दिता गया है, ऐसा दरबार कोई सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जाए, चोली विच दान पा दिता जाए, उस दाते दी दरबार च आए। जे असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकता, आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नरमंग कर ली ते प्रभु कड़ा है प्रभु मेरा अंत जामी जान। तू करता सब किछ जानदा, गल भी करनी आउंदी होनी चाहिए, दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए, दान मिल जांदा है। आ के कही तू करता सब किछ जानदा, तू तो जानना है परमात्मा मेनू की चाहिए, मेनू की लोड़ी दे, मेरे मन अंदर इच्छा की है, मेरी भावनी की है, तू परमात्मा जानना है, तेनू दसण की कोई जरूरत नहीं।

बूंद बिखूना चात्र को क्यों कर तृपतावे। नाद पुरंग के बेबिया सन मुख उठतावे। पावन लोभी कुसुम बांस का

0: अमल कर, क्योंकि साहबा ने आखे अमल तो बिना रहा नहीं जाता, अमल कर।
1: अमल जे कीते दुनी विच दर्दे आवे कम,
0: अमल कर। कैसा अमृत वेले उठ, नाम जप सिमरन कर, गुरु दरबार विच आ, ए अमल कीता तेरे दरगाह विच काम आवेगा, सफला होवेगा, ए तेरा अमल तेरी सहायता करेगा। ते असी भी ऐसा अमल करना है जिस अमल लई सतगुरां ने सानू बाणी विच उपदेश दिता है। आखदे ने बाबा मन मत मारो, नाम रस पीवै, नाम रूपी रस प्राप्त कर। ओ अमल पी जिड़ा अमल हमेशा ही चढ़िया रवे, सतगुरु नू कैसा अमल सी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दा अमल करिया करदे सन जिड़ा उतरदा ही नहीं सी, लैंदा ही नहीं सी, हर वक्त चढ़िया रहिंदा सी, अठे पैर रहिंदा सी। असी भी ऐसा अमल करना है।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

हे भाई तेरे इथे बुजुर्ग भी आया करदे सन, तू भी आया, ओ जदों भी आउंदे सन कोई ना कोई अवगण छड़ जांदे सन, कोई ना कोई चीज छड़ जांदे सन, प्रण करके जाया करदे सन, ते तू भी कुछ प्रण कर जा, तू भी कुछ त्याग दे, तू भी कुछ छड़ दे। कहिंदा तुसीं हुक्म करो की छड़ा, कहिंदे ने हुण पंडित जी ने कुछ वस्तुआं कुछ चीजां दे नां लै की छड़ सकदा है। जिस वेले अज उन्होंने ओ अवगणा दा नां लिया कि इन्हां विचों कुछ भी छड़ दे, ए व्यक्ति ए प्राणी कहिंदा कहिंदा पंडित जी जिहड़ियां गल्लां तुसीं छड़न लई कह रहे हो मैं ए ते नहीं छड़ सकदा, हां ए हो सकदा मैं इत्थे आउणा ही छड्डिया, मैं दोबारा नहीं आवांगा। ऐसे भी व्यक्ति हन, ओ अवगण नहीं त्याग दे, आउणा छड़ दिंदे ने, कई कई बार औखे हो जांदे ने कि सच दी गल सुनीए क्यों, कौन हुंदा कोई सानू सच कहण वाला, आपां जिवें चल रहे हां ठीक है, नहीं भाई इस गुरु दे दर ते आए हां, आपां कोशिश करिए एक एक अवगण त्यागण दी, ते गुरु सानू गुण देवेगा कि ऐसा नहीं ना करांगे। धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने हर बिसरत तेरे गुण गलिया गल जाणगे, इसलिए साहिब कहिंदे ने मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे ते गुणवंता, मैं ते अवगुण हारा तेरे दर ते आया, हे मेरे मालक तू गुणवान है, तेरे अंदर गुण हन, ते तू साडे ते कर कृपा।

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साईं, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे, सत्संग तो ध्यान देना। हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

चंगे, हम पापी तुम पाप खंड। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले, किवें चंगे हो गए। हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना है। हम ऐसे तू ऐसा, आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन की कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द की विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल देंदे हुए कह रहे हैं।

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है किन्ना फकर है ते ऐसा फकर भगत ही कर सकदा है भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने इसलिए भाई आओ आप उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए

ऐसे अपराधी भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जे अपराधी हाँ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया, कहिंदे 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भई तेरा किवें छुटकारा हो सकदा है। ते नाम मिलदा कित्थों है अख्या जपन वालियां की संगत विच तैनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नूं, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

ज्ञानोपम गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात गुणदाई दाया खेल सगल जगत चंगियाया बुरियाया समाचे धर्म अधूरे करमिया को अपनी

ठंडे बाटे दी पौहल नू छक लिया। वो सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

लताड़ रहे हो। जिहड़ी जनता नूं तुसीं चिड़िया समझदे हो, अपने आप नूं बाज समझदे हो। इस जनता विच मैं ऐसी रूह फूक देंगा

0: हमारी जेबा एक रम हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे आनिया
1: हर तुम बड़ अगम अथाह।

दस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।